असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भक्सार असंख मौन लिवलाए तार।

असंख मूर्ख अंध कोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गड़बड़ हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल पख खाहे, असंख निंदक सिर

तीर्थ तप दया दत्त दान जे को पावे तिलका मान सुनिया मन्या मन कीता पाओ अंतरगत तीर्थ मल नाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए विण गुण कीते भगत न होए स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ सत सुहाण सदा मन चाओ कवन सवेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन सिरुति माहो कवन जिथो आकार वेल न पाइया पंडती जे होवे लेख पुराण वक्त न पायो।

आखह पड़े करह बखियाण। आखह बरमे आखह इंद आखह गोपी तय गोबिंद आखह ईश्वर आखह सिद्ध आखह केते कीते बुद्ध आखह दानव आखह देव आखह सुर नर मुन जन सेव केते आखह आखण पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे।

गावै तुहनो पौन पणी बैसंतर, गावै राजा धर्म दुआरे, गावै चित गुप्त लिख जान है, लिख लिख धर्म विचारे, गावै ईश्वर ब्रह्मा देवी सोहन सला सुवारे, गावै इंद इंदासन बैठे देवत्या दर नाले, गावै सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे, गावन जति सती संतोखी गावै वीर करारे, गावन पंडित पढ़न रखीसर जुग जुग वेदा नाले, गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मच पयाले, गावन रत्नो पाए तेरे अड़सठ तीर्थ नाले, गावह जोध महाबल सूरा गावह खाणी चारे, गावह खंड मंडल वर भंडा कर कर रखे तारे, से इतनो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले, होर केते गावन से मैं चित न आवन नानक क्या बीचारे, सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई, है पी होसी जाए न जासी रचना जिन रचाई, रंगी रंगी भांति कर कर जिनसी माया जिन उपाई, कर कर वेखै कीता अपना जिवत सिदी वडियाई, ज्योतिष भावै सोई करसी हुक्म न करना जाई, सो पातशाह साहा पात साहिब नानक रहन रजाई, मुंदा संतोख सरम पत झोली ध्यान की करह विभूत, खिंथा काल कुआरी काया जुगत डंडा प्रतीत, आई पंथी सगल जमाती मन जीतै जग जीत, आदेश तिसै आदेश आद अनिल अनाद अनाहत जुग जुग एको वेस, भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद, आप नाथ नाथी सब जा की रिद सिद्ध अवरा साद, संजोग वियोग दो एकार

आओ। भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर मह पाया, सेव करी पल चसा न विछड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। हौ कोली जियो कोल कुमाई, जन नानक दास तुम्हारे जियो रहाओ। तनासरी महला पहला, घर पहला चौप दे इको ओंकार, सतनाम करता पुरख निरभौ निरवैर, अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुर प्रसाद जियो।

जाने हैं, सौ नेड़े तन कमलिए बाहर क्या ढूंढे हैं। पैकियां देह सलाइया नैनी भाव का कर सिंगारो, ता सुहागण जानिए लागी जां सौ तरे प्यारो।

जाता वै लभ लोभ अहंकार की माती माया माहे समाणी इनी बाती सह पाई है नाही पई कामणे आनी जाए पुशो सोहागणी वाह है किनी बाती सह पाई है जो किश करे सुपला करमानी है हिकमत हुक्म चुकाई है जा कह प्रेम पदार्थ पाई है तो चरणी चित लाई है सह कह सो की जय तन मनो दी जय ऐसा परमल लाई है एव कह सुहागणी भैने इनी बाती सह पाई है आप गवाई है।

मन बेदया दयाल सेती मेरी माई, कौन जाने पीर पराई, हम नाही चिंत पराई रहाओ। अगम गोचर गलख पारा, चिंता करो हमारी, जलथल महील भर पर लीना, घट घट जोत तुम्हारी। सिख मत सब

हैं, निरुक्त रूप हैं, त्रिमुक्त विभूत हैं, प्रभुक्त प्रभा हैं, सुयुगत सुधा हैं, सदैव अंश रूप हैं, अपेदी अनूप हैं, समस्तोपराज हैं, सदा सर्वसाज हैं, समस्तुल सलाम हैं, सदैवल अकाम हैं, निर्बाध स्वरूप हैं, अगाध हैं, अनूप हैं, ओंगाद रूपे अनादि स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे शुभं सर्वभागे सो सर्वानुरागे त्रिभुक्त स्वरूप हैं, अछिज हैं, अछूत हैं, कि नरकं प्रणास हैं, पृथ्वीउल प्रवास हैं, निरुक्त प्रभा हैं, सदैवं सदा हैं, विभुक्त स्वरूप हैं, प्रयुक्त अनूप हैं, निरुक्त सदा हैं, विभुक्त प्रभा हैं, अनुक्त स्वरूप हैं, प्रयुक्त अनूप हैं, चाचरी छंद अपंग हैं, अनंग हैं, अपेख हैं, अलेख हैं, अपर्म हैं, अकर्म हैं, अनाद हैं, जुगाद हैं, अजय हैं, अभय हैं, अपूत हैं, अतूत हैं, अनाश हैं, उदास हैं, अतंध हैं, अबंध हैं, अभक्त हैं, विरक्त हैं, अनाश हैं, प्रकाश हैं, निचिंत हैं, सुनिंत हैं, अलिख हैं, अदिख हैं, अलेख हैं, अपेख हैं, अटाह हैं, अगाह हैं, असंभ हैं, अगम्भ हैं, अनिल हैं, अनाद हैं, अनित हैं, सोनित हैं, अजात हैं, अजाद हैं, चरपट क्षमता प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं युक्ता सर्वं मुक्ता रसावल शंता प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं प्रमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्र न पुत्र न सत्र न मित्र न तातय न मातय न जातय न पातय निरसाकं श्रीक हैं मितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती शंत प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशुल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुस्नल चिराग हैं के कामल करीम हैं के राज करहीम हैं के रोजी दहिंद हैं के राज करहिंद हैं करीमुल कमाल हैं के हुस्नल जमाल हैं गनीमुल खराज हैं गरीबुल निवाज हैं हरीफुल शिकन हैं हरासुल फिकन हैं कलंकं प्रणास हैं समस्तुल निवास हैं अगंजल गनीम हैं रजायक रहीम हैं समस्तुल जुबा हैं कि साहिब किरा हैं कि नरकं प्रणास हैं बहिस्तुल निवास हैं कि सर्वल गवन हैं हमेशुल रवन हैं तमामुल तमीज हैं समस्तुल अजीज हैं परम परम ईश हैं समस्तल अदीश हैं अदेशुल अलेख हैं अमेशुल अपेख हैं जमीनुल जमा हैं अमीकुल इमा हैं करीमुल कमाल हैं कि जुरत जमाल हैं कि अचलंग प्रकाश हैं कि मित्तो सुबास हैं कि अजब स्वरूप हैं कि मित्तो विभूत हैं कि मित्तो पसा हैं कि आत्म प्रभा हैं कि अचलंग अनंग हैं कि मित्तो अपंग हैं मदपार शंत प्रसाद मुन मन प्रणाम गुणगन मुदाम अर बर अगंज हर नर पर पंज अनगन प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुणगन प्रणाम जल थल मुदाम अनशिज अंग आसन भंग उपमा पार गत मितोदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास तिर तर तुरास अजान वाहो एक सदा हो ओंकार आद कथनी अनाद खल खंड ख्याल गुरबर अकाल कर कर प्रणाम चित चरण नाम अनछिज गात आज जिना बात अनझंज गात अनरंज बात अन टुट भंडार अनठट अपार आडीठ धर्म अत टीठ कर्म अणबरण अनंत दाता महंत हर बोल मना छंदता प्रसाद करुणालय हैं अर्कालय हैं कलखंडन हैं महमंडन हैं जगतेश्वर हैं परमेश्वर हैं कलकारण हैं सर्ववारण हैं त्रित के तरण हैं जग के करण हैं मनमान्य हैं जग जान्य हैं सर्वं पर हैं सर्वंकर हैं सर्वपास्य हैं सर्वनास्य हैं करुणाकर हैं विसंबर हैं सर्वेश्वर हैं जगतेश्वर हैं ब्रह्मंडस हैं खलखंडस हैं परते पर हैं करुणाकर हैं अजपा जप हैं अथपा थप हैं अकृता कृत हैं अमृता मृत हैं अमृता मृत हैं करणाकृत हैं अकृता कृत हैं तरणी तृत हैं अमृतेश्वर हैं परमेश्वर हैं अकृता कृत हैं अमृता मृत हैं अजबा कृत हैं अमृता मृत हैं नरनायक हैं खलकायक हैं
विसंबर हैं, करुणालय हैं, निरपनायक हैं, सर्वपायक हैं, पवभंजन हैं, अर्गंजन हैं, रिपतापन हैं, जप जापन हैं, आकलंकृत हैं, सर्वाकृत हैं, कर्ताकर हैं, हर्ताहर हैं, परमात्म हैं, सर्वात्म हैं, आत्म बस हैं, जस के जस हैं, भुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग शांत रूपे नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो शांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग विभूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आशासे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजु अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी न रागे न रंगे न रूपे न रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे भुजंग प्रियात छंद नमस्तुल परणामे समस्तुल परणासे अगंजल अनामे समस्तुल निवासे निरकामंग विभूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मंग प्रणासी सुतर्मंग विभूते सदा सचदानंद सतरंग प्रणासी करीमल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियंग करियंग करीमल रहीमे चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजंभव सुमंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग भूते चतर चक्रवर्ती चतर चक्र भुगते सुजंभव सुमंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालंग प्रणासी दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगंग भूते इको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह सवैये श्री मुख वाक पातशाही दसवीं श्रावक शुद्ध समूह सिधान के देख फिरो कर जोग जति के सूर सरार्दन शुद्ध सुधारक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत को न देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाय कृपा हूं ते एक रति विनेक रति के माते मतंग जरे जर संग अनूप तंग सुरंग सुवारे कोट तरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन को जात निवारे पारी पुजान के पूप पली विद न्यावत शीस न जात विचारे ते पय तो कहां पय पूप तंत को नांगे ही पाए पधारे जीत फिरे सब देश दिशान को बाजित ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत है हजराज हजारे भूत भविख भवान के भूपत कौन गने नहीं जात विचारे श्रीपत श्री भगवान भजे विन अंत को अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दम दान सुसंजम नेम अनेक सिख है वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सुबान के पेख है पौन आहार जति जत तार सब ऐसु विचार हजार क देख है श्री भगवान भजे बिन भूपते एक रति बिन एक न लेख है शुद्ध सिपाह दुरंत दुबाह सोसा सना दुर्जान दलेंगे भारी गुमान भरे मन में कर पर्वत पंख हलैन हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मलेंगे श्रीपत श्री भगवान कृपा बिन त्याग जहान निदान चलेंगे वीर अपार बड़े बरियार अवचार है सार की धार पशैया तोरत देश मलिंद मवासन माते गजान के मान मलैया गाड़े गढ़ान के तोड़ नहार सुबातन ही चकचार लवैया साहिब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दवैया दानव देव फनिंदन साचर भूत भविख भवान जपेंगे जीव जिते जल में थल में पल ही पल में सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बाढ़ जैत धुन पापन के बहु पुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिरें जग सत्र सब अवलोक चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र नराद पजौन त्रलोक को राज करेंगे कोट स्नान गजाद कदान अनेक स्वयंबर साज भरेंगे ब्रह्म महेश्वर विष्ण सचिपत अंत पसे जम फास परेंगे जे नर श्रीपत के परस हैं पगते नर फेर न देह तरेंगे कहां पयो जो दो लोचन मूंद कै बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो नात फिरो लिए सात समुन्द्र लोक गयो परलोक गवायो
बास कियो बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसो बैस बितायो। साच कहो सुन ले हो सब जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। काहू ले पाहन पूज धरो सिर काहू ले लिंग गरे लटकायो। काहू लख्यो हर अवाची दिशा में काहू पिशाह को शीस निवायो। को बुतान को पूजित है पस को मृतान को पूजन तायो। पूर किरिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। को बुतान को पूजित है पस को मृतान को पूजन तायो। पूर किरिया उर्जो सब ही जग श्री भगवान को भेद न पायो। इको ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं चौपाई। बहर असुर का काठ समाथा श्री अस्केत जगत के नाथा। द्वितीय बान सौंदो अर कर काठ दयो अस्तु जिनर नाहर। पुनराशिष का काटा सीसा श्री अस्केत जगत के ईसा। पोहपन भ्रष्ट गगन ते पई सब ज्ञान बधाई दई। धन धन लोगन के राजा दुष्टन दाह गरीब निवाजा। खल पवन के सिरजन हारे दास जान मोहले हो बारे। कव्यो वाच बेनती चौपई हमरी करो हाथ दय रक्षा। पूर्ण होए चित्त की इच्छा तव चरणन मन रहे हमारा। अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सबे तुम कावहो। आप हाथ दय मोहे बचावहो सुखी बसै मोरो परवारा। सेवक सिख सबे करतारा मोर अच्छा निज कर दय करिय। सब बैरन को आज संघरिय पूर्ण होए हमारी आसा। तोर भजन की रहे प्यासा तुम्हें शाड़ कोई अवर न त्याऊं। जो बर चाहूं सुपम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरी है मरण काल का त्रास निवरी है। हु जो सदा हमारे पछा श्री अस्तु जू करिय हो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो देव दैत जछन उपजायो। आदि अंते कै अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी। शिवकन को सब गुण सुख दियो सतरन को पलमो बद कियो। कट कट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पिछानत। चीटी ते कुंचर अस्थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पिछाने कट कट के पट पट की जाने। जब उद करख करा करतारा परजा तर तब देह अपारा। जब आकर्ख करत हो कब हूँ तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अरियालम।

जानत महामूढ़ कछ भेद न जानत महादेव कौ कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पिव। आप अपनी बुद्ध है जेती बरनत भिन्न भिन्न तुहे तेती तुमरा लखान जाहे पसारा किह विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कहीं भूपा अंडज जेरज सेत जकीनी उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा है बैठा कहूं सिमट पयो शंकर कैठा सगरी सृष्टि दिखाए अचंभव आदि जुगाद स्वरूप सुजंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता। जे अस्तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दुख तुहै मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है ताके काल निकट नह ऐ है रक्षा हो ताहे सब काला दुष्ट रिष्ट तरै तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहिर हो ताके ताप तन कुमो हरि हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाश्व सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा जिन नर नाम तिहारो कहा दारिद दुष्ट दोख ते रहा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी आप हाथ दे ले हो बारी सर्व ठौर मोह सहाई दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। कृपा करी हम पर जग माता ग्रंथ करा पूर्ण शुभ राता किलविक सकल देह को हरता दुष्ट दोखियन को शय करता। श्री अस्तु जब पय दयाला पूर्ण करा ग्रंथ तत्काला मन बांश्त फल पावे सोई दुख न तिसे व्यापत कोई। अड़िल सुने गुंग जो याहे सो रसना पावई सुने मूढ़ चित लाए चतरता आवई। दुख दर्द पाओ निकटना तिन नरके रहे हो जो जा की एक बार चौपई को कहे। दुख दर्द पाओ निकटना तिन नरके रहे हो जो या की एक बार चौपई को कहे। राम कली महला तीजा आनंद को ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां। शब्दों तां गावो

रहो तू मन मेरे दुख सब विसारणा अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारणा सबना गलां समरथ स्वामी सो क्यों मनोह विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाहीं घर तेरे करता तेरे सब किश है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कह मन वसिया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरे साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखां सब गवाईया कर शांत सुख मन आए वसया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटह जिस दियां एह वडियाईया कहे नानक सुनो संतो सब धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कलां जित घर धारियां पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कहे नानक तह सुख होआ तित घर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमाणी लिवै बाजहु क्या करे वेचारिया तुद बाज समरथ कोए नाही कृपा कर बनवारिया ऐस नो होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कहे नानक लिवै बाजहु क्या करे विचारिया आनंद आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जाण्या जाण्या आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किलविह कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदरों जिनका मोह तुटा तिनका शब्द सचै सवारिया कहे नानक एहो आनंद है आनंद गुर ते जाण्या बाबा जिस तू देह सोई जन पावे पावे ता सो जन देह जिसनो होर क्या करह विचारिया एक भरम भूले फिरह दह दिस एक नाम लाग सवारिया गुरप्रसादी मन भया निर्मल जिन्हा भाणा पावे कहे नानक जिस देह प्यारे सोई जन पावे आवह संत प्यारे हो अकथ की करह कहानी अकथ केरी कित द्वारे पाई है तन मन तन सब सौंप गुरु को हुक्म मन्ने पाई है हुक्म मन्ने हो गुरु के रागा वह सची बाणी कहे नानक सुनो संतो कथे हो अकथ कहानी ए मन चंचला चतराई किने न पाया चतराई न पाया किने तू सुन मन मेरिया एह माया मोहनी जिन एत भरम पलाया माया ता मोहनी तिने कीती जिन ठगौली पाईया कुर्बान कीता तिसे विटह जिन मोह मीठा लाया कहे नानक मन चंचल चतराई किने ना पाया ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले एह कुटुंब तू जे देखदा चले नाही तेरे नाले।

दृष्ट होई। ये सर्वण हो मेरे साचै सुनने नो पठाए, साचै सुनने नो पठाए, शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनी मंतन हरिया होआ रसना रस समाणी। सच अलख बडाणी तां की गत कही न जाए, कह नानक अमृत नाम सुनो पवित्र हो वह साचै सुनने नो पठाए। हर जियो गुफा अंदर रख कै बाजा पवन बजाया, बजाया बाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए, दसवां गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनी, इक ना दसवां द्वार दिखाया। तह अनेक रूप नौ नवनिध तिसदा अंत न जाई पाया, कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख कै बाजा पवन बजाया। एहो साचा सुहिला साचै घर गावहु, गावो ता सुहिला घर साचै, जिथै सदा सच त्यावहे, सचो त्यावहे जां तुद भावहे, गुरमुख जिना बुझावहे। एहो सच सबना का खसम है, जिस बख्शे सोजन पावहे, कहे नानक सच सोहिला सचै।

हाथ दोनों गोडिया ते रखे ने उत्ते सिर रखे थोड़ी दूरों रावी नदी पे वगदी कान जेड़े ने कुछ सुनन दी कोशिश पे कर दे ने ए बीबी पिंडू अनपढ़ है पर मन विच रब दा बड़ा प्यार है। तीन दिन हो गए ने इस बीबी नू ए आवाज सुन दे रोज आंदी पति नू रोटी खवाण वास्ते आवाज विच ऐसी खिच है इत्थे बैठ के ए रोज आवाज सुन दी अज तीसरा दिन है। कदी कदी आवाज सुनाई दिंदी कदी पानी दे शोर विच गुम हो जांदी है पर जदों आवाज सुनदी है ता मन खिंचिया जांदा है। कहन लगी मना चल के देखा ये गाण वाला कौन है। कहन लगी ढाडी भी सुनी देने व्याहां दे विच गीत भी सुनी देने गाई दे भी ने पर एडी मिठी आवाज अज तक सुनी नहीं। चल के देखा भला कौन है गाने वाला।

खाली भांडे सिर ते रख के उस पासे तुर पई जिधरों आवाज आ रही आवाज सुन के जिधरों आवाज आ रही है उस पासे ए बीबी तुरी।

दुख लगनगे, इस करके हरी तू बगैर रहो ही ना ताकि दुख लागे ना आ। साहब जी शब्द पढ़ रहे ने, इस बीबी ने वो दुध का कड़वा कोल रखे है, चौंकड़ा मार के बैठी सिर धरती नाल जा लगा।

पर बेटा नू होश किते फिर खेया बेटा उठ सिर चुके पर चेरी दा जलाल ना सहार सकी सिर फिर धरती नाल जा लगा धन गुरु नानक साहब ने हुण कृपा कीती अपनी मेहर दी निगाह कीती क्या बेटा निहाल उठ सिर चुके पर अखां विच हुण नाम दी लाली शरीर मानू हल्का फुल हो गया लूणू दे विचों वाहिगुरु दी आवाज आ रही हाथ जोड़े दुध वाला गड़वा के कीता क्या पातशाह आप दियां दितियां दातां विचों दुध लैके हाजिर होई हैं आप जी इसनू प्रवान करो सहबा क्या बेटा संसारी लोग तुहानू दुध पुत्र दी लोड़ हुंदी है दुध तुसी छको पुत्र दा नां लिया फिर मन विच ख्याल आया जे गुरु साहब टुट पैण हो सकदा है इथों मेरी झोली भर जावे हाथ जोड़े के पातशाह ए दुध आप दियां बख्शियां होईयां दातां विचों ही लैके आई है आप जी प्रवान करो गुरु साहबां ने दुध दे तीन हिस्से कीते एक आप पीता एक हिस्सा मर्दाने ने पीता एक हिस्सा इस बीबी ने दुध दा पीता सेवा कीती नमस्कार करके वापस अपने घर चली आई।

पति नू प्रशादा खुआ के दुध लैके धन गुरु नानक साहब जी कोल आना, फिर वापस घर जाना। जेड़ा समा वेला बचना घर दे बूहे बंद करके चौंकड़ी मार के मन धन गुरु नानक साहब के चरणा दे नाल जोड़ लेना। रोज का यो ही नियम बन गए, पर इस तो पहला ए वेला समा पिंड दियां बीबियां कोल बैठ के गप्पां मारनियां ये काम हुंदा सी, हुण उन्हां कोल बहना उठना बंद कर दिता। उन्हां बीबियां ने बड़ी चर्चा कीती, पता नहीं दुद्ध दी घरवाली ने साडे कोल बहना क्यों बंद कर दिता। किसे ने कोलों कह दिता अजकल तां ओह जंगल विच साधां दे कोल दुद्ध लैके जांदी, जिन्ने मूह उन्नियां गल्लां। सारे पिंड विच गल फैल गई कि दुद्ध दी घरवाली साधां कोल जंगल विच दुद्ध लैके जांदी। इह गल बजुर्गां तों पहुंचदी होई दुद्धे तक जा पहुंची। किसे ने कहा दुद्ध आ सारा दिन खेतां ते रहना, कदे घर दी वी सार लई। दुद्धा कहन लगा क्यों की गल है, तां निंदिया करन वाले ने कहा तेरी घरवाली साधां कोल जंगल विच दुद्ध लैके जांदी, घर दा वी ख्याल रखिया कर, हर वक्त खेतां ते रहना। गल सुनी पर दुद्धे नूं गुस्सा नहीं आया, घर वाले आग्याकार सी, दुद्धा कन्ना दा कच्चा नहीं सी। कहन लगा जदू तक मैं अखी ना देखा घरवाली नूं कुछ नहीं कहना, तुहाडे आखे लग के घर विच मैं कलेश पा लवां ए नहीं हो सकदा। पहला देखांगा अपनी घरवाली नूं, फिर कुछ कहांगा। दिन बीत गया, अगला दिन आया, दुद्धे ने भी डंगर खूह ते बन्न दित्ते। दुद्धे दी घरवाली ने घर दा काम सामिया, अपने नियम अनुसार दुद्ध दा गड़वा सिर ते चुक के धन गुरु नानक साहब दे दर्शना वास्ते तुर पई। पिछे पिछे दुद्धा दांग लै के लुकदा लुकदा ए भी तुर पिया, पर जिस रस्ते ए बीबी जा रही सी उत्थे कोई पाप नहीं, उत्थे कोई पखंड नहीं, उत्थे तां आप अकाल पुरख धन गुरु नानक साहब बैठे ने। जिथे गुरु नानक होवे उत्थे पाप किथे, उत्थे पखंड किथे। ए बीबी उस गुरु नानक दे दर्शना वास्ते जा रही है, जिदे दर्शना वास्ते दुनिया तरसदी है, ते पिछे पिछे डांग लैके लुकदा लुकदा इहदा घर वाला दुद्धा भी तुरिया जा रहा है। पर धन गुरु नानक साहब कहंदे ने हौं वारी हौं वार ने कुर्बान तेरे नाम नूं अकाल पुरख, मैं वारी मैं बलिहार जाना।

कह लगा नहीं पातशाह आप दा दिता बहुत कुछ है। महापुरुषा दे तीन बचन होंदे ने, तीसरा बचन कीता दुधिया कुछ मंग लै, दुधा कहन लगा पातशाह जे तुखे हो ता ए वर दियो, बहुत सारी जमीन होवे। जिमीदार सी दुधा, बहुत सारी जमीन होवे, लवेरियां मच्छा गावां होन, दो तीन बलदा दियां जोड़ियां होन, सोने मकान होन। सैव जी कहन लगे ए सब कुछ मिल जाएगा, कुछ और मंग लै। कहन लगा बस पातशाह और कुछ नहीं चाहिए। मर्दाना कोल बैठा है, होली जी मर्दाना कहन लगा दुधिया सतगुरु जी तुठे ने नाम दी दात मंग ले, ते जिहड़ी चीज बारे ज्ञान ना होवे ओ चीज आपा लैंदे ने। दुधा होली जी कोलों कहन लगा मैनू ता जमीन मझां गावां चाहीदियां ने, मैं नाम की करना है, मेरे किस तों किया तां होली, पर सतगुरां सुन लिया ते नाले हस पए। कहन लगे दुधिया ये सब कुछ मिलेगा, तेरी घरवाली सतसंगण है, तेरी घरवाली दे सदका जा तेनू नाम दी दात भी प्राप्त होवेगी। कई बीबियां इन्ने भागा वालियां हुंदियां ने कि जिन्हां दी सदका कुलां तर जांदियां ने। हुण दुधा भी सतसंगी बन गए, होर भी जिन्ने जिन्ने गुरु नानक दी सोभा सुनी ओह भी आण लग पए। जेड़ा भी आंदा है फिर होर किधरे नहीं जांदा, जंगल दे विच आनंद ही आनंद हो गया हर पासे।

कि धन गुरु नानक साहब की शोभा बड़ी हो रही है, इस नूं खत्म करना चाहिए। दुनिया विच ऐसे इंसान भी ने जेड़े ना चंगा काम करते ने, ना किसी नूं करन दिंदे, ना आप रब वाले पासे जाना, ते कोशिश होंदी है कि ना ही दूसरा कोई जावे। ऐसे सन ये लोग, ये सारे जने इकट्ठे होके लाहौर जा पहुंचे, जिस जगह धन गुरु नानक साहब बैठे सन, ये एक मुसलमान हाकम करोड़िए दी जगह सी। सत कोठियां सत झंडे झुलदे सन, बड़ा अमीर सी। उहदे कोल जा चुगली कीती, करोड़िया तू लाहौर बैठे, तेरी धरती ते एक साधु ने कब्जा कर लिया, हाली तक कच्चे छप्पर पाए ने, उठाना सौखा, जे पक्के मकान बना ले, जे पक्के मकान उस साधु ने बना ले तो उन्हें उठाना औखा हो जाएगा, होने ही कुछ कर। ये सुन के करोड़िए नूं बड़ा गुस्सा आया, कहन लगा अच्छा मेरी धरती ते साधु ने कब्जा कर ले। उस वेले हुक्म दिता, 100 जवान डांगा वाला तैयार किया, अपने हाथ विच भी डांग फड़ी, करोड़िया घोड़े ते चढ़िया, ते धन गुरु नानक साहब नूं मारन वास्ते तुर पिया। कहन लगा जिहड़ा भी उत्थे साधु ते संगत बैठी है सारिआं नूं मार मार के धरती ते विछा देंगा। तुर पिया लाहौर तों, पर जदों अध विच आया घोड़ी त्रबकी, करोड़िया थले डिग पिया घोड़ी तों, लत टुट गई, फिर वापस चला गया। एक महीने दे बाद ठीक होके फिर 100 जवान नाल लिया, फिर धन गुरु नानक साहब नूं मारन वास्ते तुरे। इंसान जदों पाप करन लगदा है कई वारी ठोकर लगे समझ आंदा है, ते कई वारी ठोकरां लगदियां ने तां भी नहीं समझदा, पर एक समा ऐसा आंदा है कि जदों इंसान नूं झुकना ही पैंदा है। करोड़िया अज फिर ठीक होके धन गुरु नानक साहब नूं मारन वास्ते तुर पिया, जिहड़ा कि गुरु नानक मरिया नूं

अद तू अगे आया अचानक दिखना बंद हो गया नजर कुछ नहीं आता एकदम रुक गया पिछा मुड़ के देखे ता थोड़ा थोड़ा नजर आता है पूरा नहीं दिसदा अन्ना हो गया अगे जांदा है कुछ नहीं दिखता पिछे मुड़दा है चौला पहनदा है पूरा नहीं दिसदा ना अगे जान हुंदा है ना पिछे मुड़न हुंदा नाल दे साथी बड़े हैरान ने कि करोड़िए नूं की हो गया है करोड़िया कहंदा मैनूं दिसदा कुछ नहीं अगे जाना बिल्कुल अन्ना हो जाना वा पिछे मुड़दा वा तां वी नहीं दिसदा पूरा

बड़ा परेशान हो गया। ये दुनिया कुदरती कोई असूल ही ऐसा है कि कुछ लोग बंदगी करते नहीं, कुछ लोग बंदगी करने वाले चंगे नहीं समझते। उन्हां दी कोशिश होंदी कि जिहड़ा इंसान बंदगी कर रहा है इन्हू मैं खत्म कर दी, ये बंदगी ना करे। अज करोड़िया भी इसे वास्ते आया कि गुरु नानक का प्रताप वध रहा है। ये तो निंदकां दी चुक सी, ते दूसरा माण यह कि मैं माया वाला वा, मेरी धरती ते गुरु नानक ने कब्जा किया, मैं उन्हू खत्म करना। पर अन्ना हो गया, ना अगे जाया जाता ना पिछे मुड़िया जाता। तो इन्ने नू भागा वाली बीबी उहदा पति दोदा खेतां कम करके आ रहे सन, करोड़िए नू देखिया तो समझ गए कि धन गुरु नानक साहब नू मारन वास्ते जा रहे। पर अन्ना हो गया, उस बीबी ने आवाज दिती, ओ करोड़िया शोक दी कांग गे हिक नाड़ा, जदू दरिया विच हड़ आया होवे तां उहदे सामने छाती नहीं डाई दी, दरिया रोड़ के लै जांदा है। गुरु नानक दरिया है, समुंदर है, ते एवें अगे हिक डाई जांदा है। जे कुछ लैणा ही थले उतर घोड़े तू डांग सुट, साथी वापस मोड़। मन विच निम्रता लिया, वो गुरु नानक नू मारन चलिया जिहड़ा मरिया नू जीवन दिंदा है। इस जमीन बदले वो तारशां दा मालक है, दाता वो दिंदा है। तो उस गुरु नानक नू मारन चलिया, इस साहिब जी बाणी विच कहंदे ने, जिस अगे जोर ना चले खले की चिरदास, जिथे जोर ना चले उथे हाथ जोड़ के फिर अरदास करनी पैंदी। हुण करोड़िए दा जोर कोई नहीं चलदा, डांग सुटी घोड़े तो थले उतरे आ, पैरां विच जुत्ती लाई, साथी वापस मोड़े। मन विच निम्रता लियांदे तां दिखण लग पिया तोता अगे वधिया, करोड़िए दी बांह फड़ ली। क्या करोड़िया तू गुरु नानक नू मारन आया सी, पर चल देख गुरु नानक तेनू की कहंदा है। ते करोड़िया डरन लग पिया कि किधरे गुरु नानक साहब कोई शराप ना दे दे, माता मेरी कुल दा ही नाश हो जावे। ए डरदा डरदा दोते दे नाल तुरिया जा रहे है। दरबार विच पहुंचे, संगत बैठी है, तन गुरु नानक साहब शब्द पढ़ रहे हैं, दोते ने मत्था टेके।

फिर आनंद नहीं है। इसलिए आओ बारों बिरतियां नू मोड़ो, जिथे भी सेवक की आवाज पुज रही है हजूरी विच वसो, ता अमृत कीर्तन अमृत बरखा होएगी अमृत कीर्तन दी। इसलिए आओ सारे प्यार नाल।

धर्म का तन गुरु नानक के पास वेन नदी चुप्पी मार के खट खंड के खट खंड मान लो शायद आज हजूर फिर चले गए सुल्तानपुर के अंदर सारे शहर के अंदर के पहुंच गए ये नारद वे नदी युद्ध वैसे नारदी भी कई ने जाती किया जैसे तेरा वीर वे नदी तो बाहर नहीं निकली पर देवी ने जल्दी कि मेरा वीर कदे नहीं डूबता उस डूबिया उतारना पशु परेत मुगत को उतारे पाहन पास उतारे हजू सचखंड पहुंच सचखंड वसे नरम अगे लूर ही जानना ही जानना उस जोर के अंदर जाके हजूर लीन हो गए जो जर में जर आए खटाना क्या ज्योति सन जोत कुछ समय के बाद उस जोर के विचों सोना कांत आ के सतगुरु सामने सन्मुख बैठे आवाज आई नानक जी तुम मान लो कल भी जीवन उद्धार करने वास्ते वापस क्यों आ गए हजूर ने किया मेरे दादा जी पहले दसो सत्खंड के द्वारे से दरवाजे से अनेक ही राम अनेक ही कृष्ण अनेक ही मोहम्मद ईसा मूसा गोरख खड़ोते सहबाने से सब कुछ आया जित दर लख मोहम्मदान ब्रह्मा कृष्ण पर महाराज तुम इन्होंने अपने नींद क्यों नहीं आवाज आई ने मैं दुनिया भेजे जाके मेरा नाम जपाओ पर इन्होंने मेरा नाम जपान की बजाय अपना नाम दिया इन्होंने अपना नाम जपाया अपना करती अपनी जनानिया का नाम नहीं लेने इस वास्ते मेरे दरवाजे तक पहुंच गए हैं मेरे लिए नींद नहीं बनी साहबान ने हथ अरदास की वाहेगुरु फिर करो कृपा असी मातरों में जाके की दुनिया नहीं तो उस अकाल पुरख ने हुक्म किया कि नानक जी ए नाम जान के दुनिया में छुपाओ खेड़ा ए नमकारी नाम महामस्त

मंत्र है, पहली थोड़ी बोल अमृत ने जाग कर स्नान करके चले आए हैं। एक दिन कले तुर जाए तो एकांत कह के अपने सारे की मूल मंत्र का जाप करे, बड़ा महम बड़ी शक्ति है ये दंगारी मंत्र, जितना जप लो ये बड़ा काम, तुरदियां फिरदियां उठदियां बहदियां हर ना वो नाम वाहिगुरु जी का मंत्र जपांगे सतगुरु दिया मेहरा फिर सानू की मिलेगा साडा जीवन सफला फिर साडा एक लोक सुखी पर लोक अखीरला खालसा जी की वार का मिलकर लगाइए उस उपरंत कीर्तन मात्री और सारे

अष्टपदी पूरे गुरु का सुने उपदेश पार ब्रह्म निकट कर पेख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की तूर मन मंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगन सागर करो हर तन के पर लेहो पंडार नानक गुरु पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक निवार उतारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चितवो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह अतार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल एह रतन सुनत कमावत होते उतार आप तरह लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजय सुन सुन आनंद करे प्रभु गाजय परगटे गोपाल महांत के माथे नानक उदरे तिन कह साथे सरन जोग सुन सन्नी आए कर कृपा प्रभु आप मिलाए मिट गए बैर भय सबरीन अमृत नाम साध संग लैन सो प्रसन्न भये गुरुदेव पूर्ण होई सेवक की सेव आल जंजाल विकारते रहते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रवतारी नानक निभी खेप हमारी प्रभु की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम जिस मन बसैस होत नितान सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ते ऊच पाए स्थान बहुत न होवे आवन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत रिद नव निद बुद्ध ज्ञान सर्व तह सिद्ध विद्या तप जोग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार पदार्थ कमल परगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख पने गुरु नानक नाम।

कोई मेरे मन विच तांग होवे के मैं जाके तेरे दर्शन करा। गुरु अमरदास सच्चे पातशाह, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी जिन्होंने 12 साल सेवा की थी। 72 साल दी उम्र विच बाबा अमरदास जी जदों गुरु अंगद देव पातशाह दे कोल आए ते जदों दर्शन कीता ते मन मन गया। आ मन जिथे मन्ना होंदा ना वो उथे एक नजर ते ही मन जांदा, पहली नजर ते ही मन जांदा। जदों बाबा अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी दे दर्शन कीते आख्या मैं गुरु दी पाल कर रहा सां ते अज मैनू गुरु प्राप्त हो गए। उस दिन तो बाद बाबा अमरदास जी अपने घर नहीं गए, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह दी सेवा विच लग गए। रोज गागर दी सेवा करनी, खंडूर साहब तो गागर लैनी, 5 मील तुरते हुए ब्यासा।

के बादशाह पिट हो रही है हुण इत्थों दी मैनू माफी दे दे। ते आपने फिर जाना ब्यासा नदी तो जल दी गागर भरनी सिर ते चुकनी ते फिर सत्कार दे नाल मन विच पावना।

जवन काल सब जगत बनायो देव दै जचन उपजायो आद अंत एक है अवतारा सही गुरु समझियो हमारा नमस्कार तिशी को हमारी सकल प्रजाजन आप सवारी शिवकन को शिव गुण सुख दियो सतरन को पल मोह बद कियो कट कट के अंतर की जान पले बुरे की पीर पछान चीटी से कुंचर अस्तूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संत।

जब उन तर्क करा कर तारा प्रजा दर्द तब दे अपारा जब आकर कठो कबू तुम मैं मिलत दे तरसबू जेते बदन श्रेष्ठ सब धारे आप आपनी बूझ उचारे तुम सब ही ते रहत निरालम जानत भेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लम आत अनिल अनाथ असम ताका मूड उचारत पेदा जाको पेव न पावत बेदा ताको कर पाहन अनमान महामूड

जे अस्तुज तव सरणी परे तिनके दुष्ट दोख तह मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे जोकल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकट ने आए हैं रक्षा होए ताहे सब काला दुष्ट अरष्ट रहे तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो ताके ताप तनक मोह हर हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हुई दुष्ट छा छह सके न कोई एक बार जिन तुम्हें सवार काल पास ते तय उबारा जिन्नर नाम तहारो कहा दर्द दुष्ट दोखते।

सत्संगी सज्जन गुरु के प्यार वाले जितने भी माई पाई साहिब गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी के पवित्र कदमों की हाजिरी भर रहे हो

वो एक पिता सन और पिता ही पूरे हो गए। वो धन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह नो अपना पुत्र समझदे सन और पुत्र ही समझदे रहे। इस तो वध कुछ ना समझ सके। उसे घर विच उन्हां दी भैण बेबे नानकी है तो उसका भी रिश्ता भरा दा, पर वो पीर भी समझ लिए, गुरु भी समझ लिए। उसे नगर विच उस नगर का मालिक है राय बुलार, वो भी गुरु नानक पातशाह नूं रब दा रूप समझदा है, पर मेहता कालू जी नहीं समझ सके, माता जी नहीं समझ सके।

जलती सब पृथ्वी दिसे आई, सारी पृथ्वी जलदी हुई नजर आई। तो फिर चढ़िया सोधन तर च लकाई, उन्हें इंसानों ने दुखी वेख्या सी, कारू के राज विच भुखे वेख्या सी, भोजन कीते तो बिना ही सौंदे सन बहुते लोग।

Maya. और ढंडोरा पिटवा दिता सी कि किसी को एक भी पैसा निकल आया तो उसनु सजाए मौत हो जाएगी। ते कारो दे कहर तो सब डरते सन। कुछ दिन जब कोई पैसा ना आया अमीरां वजीरां नाल सलाह की कि बस सब देश खाली हो गया, किसी को पैसा ना। ता किसी ने एक सलाह दी कि एक होर भी तरीका है। यह तो डर का तरीका से हुण लालच का, कि जे कोई एक भी पैसा लिया के देवे मैं अपनी लड़की का रिश्ता और अद्धा राज देंगा उसे। जदों वेखिया कि किसी कोल भी पैसा नहीं है तो एक नौजवान मन चला अपनी मां के पास जाके रोन लग पिया। कहिंदा मां राज मिलदा जे बादशाह की बेटी का रिश्ता। मां ने बथेरा समझाया कि मैं तो उम्र गवाई है इस राज विच कदे सुख नहीं वेख्या। इसने तो गरीबां का खून नचोड़िया है, कदे किसी नूं सुख नहीं दिता। तू की उम्मीद करदा है? झूठी गल ते इतबार ना करदा। खेड़े पै गया कि किधरे कोई लुको के रख्या हो। बहुत दिन जिद फड़ी रखी तो मां ने दसिया कि मेरे पास तो नहीं रखिया, पर जदों तेरे पिता नू दफनाया सी तो उसके मुंह विच एक पैसा रखिया। कबर खोद लै, उसके मुंह विचों कढ लै, वह तो हुण रस्म पूरी हो गई। जे वह तैनू मिल जाए। कहिंदे ने उसने इसे तरह कीता, अपने बाप की कबर खोद दिती, उसके मुरदे शरीर विचों पैसा कढ लिया, कारू दे अगे चाई चाई जाके रखिया। उसने नाले तो उसनू बंदी बना लिया, गिरफ्तार कर लिया, नाले पैसा ले लिया। पुछया कित्थों लिया है? उसने दसी गल सारी कहानी। तां कारू ने सारियां कबरां खुदवा दित्तियां सी।

महल मंदिर घर हर का तिसमह राखी जोत अपार तिसमह राखी जोत अपार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। मानयोग साध संगत जीओ, कीर्तन द्वारा असी श्रवण कीता है हरमंदर दी महिमा। साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने जिन्हां ने इस धर्म दी, इस गुरमत मार्ग दी आरंभता कीती है, उन्हां ने सानू यह गल समझाई है कि वाहिगुरु अकाल पुरख दा मंदर केड़ा है। सतगुरु कहिंदे हन काया महल मंदर घर हर का तिस मह राखी जोत अपार। कहिंदे ने इह जिहड़ा शरीर है ना, इह उस वाहिगुरु अकाल पुरख दा मंदर है, उस दा घर है, उस दा महल है। इस दे अंदर उसने अपनी जोत रखी है। रोज पढ़ते हां सब मह जोत, जोत है सोए तिस दै चानण, सब मैं चानण हुए। इसे तरह गुरु अमरदास पातशाह जी ने भी बचन कीता। सतगुरु कहिंदे ने हर मंदर एह शरीर है। इसे ही शब्द विच गुरदेव कहिंदे ने हर मंदर ए जगत है। बहुत सारे प्रमाण इस दे संबंध विच दिते जा सकते ने, लेकिन प्रमाण देण नालों इस भाव नूं, इस विचार ते सिद्धांत नूं समझना बहुत जरूरी है। सतगुरु इस विश्वास विच नहीं हन कि कोई एक जगह, कोई एक इमारत वाहिगुरु अकाल पुरख दा घर हो सकदी है, कि सिर्फ उत्थे ही रहिंदा होवे। नहीं, उन्हां दी दृष्टि विच समुचा संसार, सारी सृष्टि उस वाहिगुरु अकाल पुरख दा घर है। इस दे कण कण विच उस दा वास है। इसे विचार दी व्याख्या करदिआं भाई नंद लाल जी ने बिल्कुल स्पष्ट कीता। भाई साहब कहिंदे ने उस मनुख नूं जिहड़ा भ्रमण करदा रब दा घर लभण लई, कदे किते जांदा है। भाई साहब कहिंदे ने चिरा बेहूदा मेगरदी बसहरा ओ बदश्त ऐ दिल, चूआ सुल्तान खूबा करदा अंदर दी दा मंजिल हा। कहिंदे ने रब ते तेरे अंदर वसदा ते तू बाहर नठिया फिरदा है, रब ते तेरे घर विच है ते तू लभदा फिरदा है, पे किसे होर पासे होएगा? कहिंदे नहीं।

ताती भावना लग गई, पार ब्रह्म शरणाई। नो हार्म कम्स टू देम हु आर अंडर वाहिगुरुस प्रोटेक्शन। ऑन ऑल फोर साइड्स इज माय लॉर्ड्स प्रोटेक्शन। आई हैव मेट द परफेक्ट लॉर्ड हु इज द क्रिएटर। ही हैज गिफ्टेड मी विद द बाम ऑफ लॉर्ड्स नेम एंड आई हैव एनश्राइंड लव फॉर हिम विद इन माई सेल्फ। The preserver has protected me and cured me of all my ailments. The Lord has taken me under his wings and has become my protector.

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहिब श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी के चरण कमलों के नमस्कार। हजूर बाबा जी अपने इस अमृतमय वचन दे विच जो विचार पेश कर रहे हैं, बख्शिश कर रहे हैं, वो साढ़े प्रीवियस कीर्तना की जो लड़ी है उसके नाल संबंधित है। इस शब्द दे विच आख्या है कि क्या तुद कर्म कमाया है, कि तू की आके कीता है। इसका भाव कि कुछ करन दे वास्ते ये शरीर प्राप्त होया सी, इसका भाव देर वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट मिशन इन लाइफ टू बी कंप्लीटेड। देर वार सम वेरी इंपॉर्टेंट वर्क टू बी डन, ए जर्नी टू बी कंप्लीटेड, ए ड्यूटी टू बी फुलफिल्ड। कहते हैं हूं तक तू दस उस संबंध दे विच तू कुछ कीता है, की कीता है। इस शरीर मेरिया इस जग में आए के इस जगत दे विच आके क्या तुद कर्म कमाया, की कर्म तू कमाया है, की कीता है। और कल का जो कीर्तन सी उस शब्द विच महाराज जी ने आख्या सी अंधले क्या पाया जग आए, जगत दे विच आके तू की पाया है। विचार इको ही है। अज तीसरे जामे च गुरु नानक देव जी आख रहे हैं कि तू की कम कीता है। भाई गुरु नानक साहब कल दे शब्द दे विच फरमा रहे सन कि अंधले क्या पाया जग आए, तेन शरीर मिलिया सी उस शरीर दे नाल तू की पाया है, की अचीव कीता है। देखते हैं कि इस शरीर तेन दिता सी इस दे नाल तू कुछ खास पाना सी, तू कोई कम कर

दर्शन कीता ते मन मन गया। आ मन जिथे मन्ना होंदे ना ओ उथे एक नजर ते ही मन जांदे, पहली नजर ते ही मन जांदे। जदो बाबा अमरदास जी ने गुरु अंगद देव जी दे दर्शन कीते, आख्या मैं गुरु दी पाल कर रहा सां ते अज मैनू गुरु प्राप्त हो गए। उस दिन तो बाद बाबा अमरदास जी अपने घर नहीं गए, गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह

सत्संग मिले सो तरिया मेरे माधव जी, सत्संग मिले सो तरिया गंग बनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का कबा।

हे भाई, जे तू सदा ही सुख चाहना चाहना कि दुख मेरे नेड़े ना आवे, मैं किसी मुसीबत विच ना फसा, हमेशा ही खुश रवा। साहब आखदे ने एक कम कर, केड़ा? जे लोड़े सदा सुख पाई।

फिर गुरु दसता है जीव तू संगत विच जा, जदों संगत विच जाएगा सुख ही सुख मिलेगा, दुख तेरे नेड़े नहीं आवेगा, संगत करन दा यही ते लाभ है। ते साहिब आखदे ने मेरे माधो जी सत संगत मिले सो तरे, उतर गए ओदा उधार हो गया है, जिहड़ा संगत दे नाल आ मिले ते जिहड़ा संगत नाल टुट गया है वह काला हो गया, जे कोई संगत नालों निखड़ गए, संगत नालों संबंध टुट गए, गुरु नालों वखरा हो गए, गुरु तो बेमुख हो गए, ते जिहड़ा गुरु तो बेमुख हो जाए वह काला हो जाता।